को मालूम था आज प्रभु आएंगे, आज सेवा का अवसर मिलेगा, जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। भगवान राम पहुंचे, केवट से कहा, केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, एक शर्त है। प्रभु ने पूछा, शर्त क्या है? केवट ने कहा, प्रभु पहले अनुमति दें,

तेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। प्रभु मुस्कुराए, केवट की चतुरता समझ गए, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे,

भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन देते क्या, कुछ था ही नहीं। वनवासी राम सब छोड़कर आए थे, इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता, आज तो सेवा का अवसर मिला है,

ये तो एक नियम है, आपसे नहीं ले सकता। भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए

0: भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे, मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
0: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बिन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London. With even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274733732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274-488-935।
0: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for Realizing the True Self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977-201226. Mirdosh Kumar 07899-055525. Gurkirit 07886-545970. Usha 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां घूमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
6: Move for 10 is here, the new challenge from Disco Can that everyone can join. Move for 10 minutes, 10 times a month. I've got more energy, I feel more confident. I'm sleeping better. From a stretch in the morning to a brisk walk around the park. No pressure, no strict schedule. Just move when it suits you. I've logged 3 sessions already. And I'm feeling good. Women across the country are moving for 10 minutes 10 times this month. To join, search This Girl Can Move for 10.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
8: Be the

0: कफन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफोर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट

0: मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01-274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: जे तुसा पुराना सुना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
4: चाचा जूलर्स, ओकलैंड, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274-488-935।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274 488 935।
0: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977 201226. Mirdosh Kumar 07899 055525. Gurkirit 07886 545970. Usha 0793 1788 062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम और 100.6 एफएम पर वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं, और अगर आप वेबसाइट पे हमें सुनना चाहें तो हमारी वेबसाइट एड्रेस रहेगी www.sunriseradio.fm। तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभी का, जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। तो दोस्तों, हुमा खान हमारे साथ होती हैं लेकिन किसी मसरूफियत की वजह से थोड़ी देर के लिए वो लेट होंगी। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगी। तो दोस्तों, आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं।
1: To the hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना और उसके साथ ही टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 16:11। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे सुनने वालों, और मैं हुमा खान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। और इंशाल्लाह 3 घंटे का सफ़र हमारा जारी रहेगा और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को पूरी पूरी तरीके से एंटरटेन करें।
0: तो आप एंटरटेनमेंट क्या डेट क्यों हो गई है भाई, क्या हुआ? गाड़ी का मसला हो गया, नेबर का मसला हो गया
2: क्या? कॉलेज और स्कूलें खुली।
0: अच्छा अच्छा, वो इस वजह से। चलिए ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं कमर्शियल की जानिब। और खान भाई, आपने फोन किया, आपने कहा कि आप काम पे हैं और इस वक्त आपके दोस्त जो हैं साथी काम कर रहे हैं, जिनमें आतिफ, बशारत, फारूक और लेथ। और ले तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द म्यूजिक, बट होपफुली यू कांट अंडरस्टैंड द लिरिक्स, बिकॉज इन माय ओपिनियन आई थिंक यू कांट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। बट म्यूजिक यू नो इज अ थिंग एनी यू नो पर्सन कैन अंडरस्टैंड द म्यूजिक। सो एनी वे लेथ, थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड फारूक, आतिफ और बिशारत और खान भाई, आपके नाम, गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी। तो चलते हैं जनाब, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद होगा गीत और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
3: नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative?

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। हुमा जी जो है वो अब वाजिद भाई को कहा कि गाना ख़त्म होने लगा है, तो उन्हें काट दिया, फिर शुरू हो गए। खान भाई ने अभी फिर मिस कॉल दी,
1: हो सकता है उन्हें कुछ जरूरी बात बतानी हो।
0: हाँ हो सकता है, तो खान भाई ने अब फिर मिस कॉल दी, इसका मतलब ये हुआ कि उनको गाना ये अच्छा लगा। और खान भाई आप इस वक्त अपने दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं, साथियों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए दो तीन गीत होंगे जनाब, ज़रूर होंगे। आने वाला गीत भी जो कमर्शियल के बाद होगा वो आतिफ भाई, बिशारत भाई, फारूक भाई और लेथ के लिए गाना होगा। और इंजॉय कीजिएगा, काम इंजॉय कीजिएगा और साथ में म्यूज़िक को भी इंजॉय कीजिएगा। तो अब चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा और ये गीत गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम होगा, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम को अभी नहीं भूला हूँ मैं, आपके साथ इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर, इफराज हैं, उनके नाम भी करेंगे, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, और साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान मीरपुर में प्यारी बहन तबस्सम भी सुन रही हैं, उनके नाम भी करेंगे। तो आपने कुछ कहना है या मैं चला जाऊं कमर्शियल पे? हुमा जी
1: आपने जो कहना था बोल दिया है, तो हम कमर्शियल पे ही चलते हैं क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना है।
0: ठीक है, टाइम तो वैसे एक मिनट बाकी बचता है कमर्शियल में,
1: ठीक है
0: तो पहले चले जाते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल जनाब।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। Life changing sessions featuring profound talks, practical insights, and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday, 11th, and Saturday, 12th September, 6 pm to 8 pm, and Sunday, 13th September, 3 pm to 5 pm. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977 201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों माजे चाहते हैं ये गाना जो चला रहा था मैं, ये गाना नहीं चल रहा, बार बार उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो बार बार कह रहा मैं नहीं चल रहा। ये हुमा जी ने कुछ किया, आई डोंट नो व्हाट शी डिड। ये गाना मैंने सेट करके रखा हुआ था, चल रहा था, और फिर जो है हुमा जी ने पता नहीं क्या किया, और जो है वो ये गाना चलता हुआ पहले चेक किया मैंने, चल रहा था फिर बंद हो गया, अब नहीं चल रहा। आई डोंट नो कि क्या हुआ इसको। तो एनीवे उसके बदले हम और गीत लगा देते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग मैं आप दोस्तों के लिए प्ले कर देता हूँ, यकीनन आप इस गीत को ज़रूर पसंद करेंगे।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही आनंद राज आनंद की प्यारी सी आवाज में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और नदीम मंसूर साहब, आपने जनाब फोन किया, तीन चार गीतों की फरमाइश की जो हमारे सिस्टम में नहीं थे, तो फिर आपने कहा कि पंजाबी का गीत कोई लगा दीजिएगा, तो पंजाबी का गीत ज़रूर लगाएंगे जनाब। आप जो है वो पंजाबी का गीत सुनना चाहें तो हम क्यों ना लगाएं जनाब। तो आप सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, सब के नाम जनाब ये पंजाबी का गीत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दोस्त जो हैं एंजॉय करेंगे। दो गीत पंजाबी के जो हैं मुझे मिल रहे थे, तो मैंने अब डबल माइंडेड हो गया कि कौन सा गीत लगाएं और कौन सा ना लगाएं। तो आपको तो पंजाबी का गीत, कोई पंजाबी की समझ नहीं आती ना पंजाबी के गीतों का पता होगा।
1: म्यूजिक पसंद है मुझे
0: जी,
1: पंजाबी म्यूजिक पसंद,
0: म्यूजिक पसंद है, गीतों का पता तो नहीं होगा।
1: पता है ना,
0: पता है। तो मैंने दो गीत पिक किए हैं अभी नदीम मंसूर साहब के लिए जल्दी में, क्योंकि इतने में जो है, बल्कि तीन गीत मैंने पिक किए हैं। एक है दलेर मेहंदी का, जो है वो कहता है दिल मेरा नाल नाल, ठीक है
1: जी,
0: वो लगाऊं
1: जी।
0: या दिल चोरी हो गया हंसराज का हंस का, या फिर दिल ता पागल है बाबू मान का, तो कौन सा गीत लगाएं?
1: पहला वाला।
0: ये पहले वाला, वो पहले वाला तो है ना दलेर मेहंदी का।
1: हाँ
0: ठीक है जी, तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दलेर मेहंदी को। और सभी सुनने वालों के नाम नदीम मंसूर साहब के साथ साथ जितने दोस्त सुन रहे हैं, खान भाई आपकी पूरी टीम और गुलाम भाई आपकी भी पूरी टीम के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने दिलेर मेहंदी की आवाज में प्यारा सा गीत सुना और नदीम मंसूर साहब ने कहा था कि वो कोई पंजाबी का गीत सुनना चाहते हैं, तो स्पेशली पंजाबी का गीत नदीम मंसूर भाई आपके लिए पेश किया था। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि टाइम हो गया है जनाब कमर्शियल का, तो कमर्शियल के बाद आप एक सदाबहार पुराना गीत सुनेंगे और वो गीत होगा जनाब अपने तमाम दोस्तों के नाम, स्पेशली जनाब हीरा खान, वाजिद भाई, नदीम मंसूर खान साहब और जनाब सफीउल्ला भाई, गुलाम भाई और नवीद भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। और जल्दी में टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, इस वक्त टाइम जो हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं वो बता रही है 11:46, यानी कि 46 minutes पास्ट 11। तो कमर्शियल पे जानब चलते हैं। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.
6: Sunrise Radio.
7: The classic flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब चलते हैं यार, एक सोज भरा होमा बहन सुन लेते हैं
1: जी,
0: सोज भरा गीत सुन लेते हैं, क्या ख्याल है
1: जी?
0: और ये गीत मेरी जन्म से तमाम सुनने वालों के नाम।
1: थैंक

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और हमारे साथ हैं
1: हुमा खान, आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: और अब जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं इट ऑफ द आवर के साथ, और इट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
2: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9। कॉल 01274 056-014.

0: वही मैं बोल रही हूँ।
1: तो अभी आप दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे एट ऑफ द आवर की शक्ल में और इसके साथ टाइम कैच कर रहे थे।
2: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:14 होने को हैं यानी कि 14:12 तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद खान भाई आपने फिर फ़ोन किया था

हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं जनाब कमर्शल के बाद गीत, गीत के बाद मस्ती भरा गीत होगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शल, कमर्शल के बाद गीत, गीत के बाद हमारी मुलाकात होती है।

0: कफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना ऑन टाइम पे। आपने बताया कि मुझे कि खान साहब ने कहा था कि कोई मस्ती भरा गीत लगाओ।
1: जी जी।
0: तो अच्छा हुआ, खान साहब को पसंद आया होगा, उनके साथियों को भी। और अब जनाब एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है, मस्ती भरे गीत फिर आप चलते हैं। और हमें इस वक्त जनाब सुन रही है मैनचेस्टर में मिसेज राणा, तो शुक्रिया मिसेज राणा सुनने का, साथ निभाने का। और बड़े अरसा आप गायब रहीं, किधर गईं? और आपके नाम करेंगे ये गीत गुलाम भाई, आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे, मलका जी, जिया जी, आशा जी, रानी साहबा, नवीद भाई। और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे, इस वक्त सहेलियाँ काम कर रही हैं, इकरा जी सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, तज़ीम, जायदा और साइमा के लिए, और पैनी बेरा, आजरा और जनाब मेरी प्यारी बहन सादिया जी, आप के नाम भी करेंगे। और तो चलते हैं, सुनते हैं इस मस्ती भरे गीत को, उसके बाद मिलते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब क्या क्या करेंगे हम होमा जी?
1: जी अभी इनका फोन आया था।
0: नहीं, वो फोन तो आया, अब करेंगे क्या?
1: अब कमर्शियल पे जाएंगे।
0: हाँ जी, मैं यही सोच रहा था, आपको पता है कि नहीं है। तो हमें फोन आया था महमूद भाई का, तो महमूद भाई कमर्शियल के बाद मस्ती भरा गीत है आपके नाम होगा, और खान भाई आपके नाम होगा, बिशारत भाई के नाम होगा, फारूक भाई के नाम होगा, लेत साहब के नाम होगा, आतिफ भाई के नाम होगा, और शाह जी के नाम होगा, और अयूब चौहान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके आपने कहा कि आप अपने दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो ये मस्ती भरा गीत आपके दोस्तों के नाम भी होगा, और उसके साथ साथ गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और जनाब हमारे जो हैं वो आबिद भाई इस वक्त वो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका पूरा स्टाफ रेडियो सुन रहा है, तो उनके नाम भी करेंगे। और मलिक इम्तियाज़ साहब बिल्कुल आप भी फ़ोन करना शुरू हो गए हैं, आपको नहीं भूला हूं मैं, अभी भी ये गाना आपकी टीम के नाम लगाया था, और जो आने वाला गीत है वो भी मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी टीम के नाम लगाऊँगा। इकमाज़, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अलदता, उमैर, बाबर, इफराज, उनके नाम भी देखा, जब मस्ती भरे गीत होते हैं तो सारे फोन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, काम के दौरान उनको मस्ती भरे तेज तेज गीत चाहिए
1: सारे
0: होते
1: हैं। जाग जाते हैं।
0: हाँ, तो जब आप प्रोग्राम शुरू करेंगी याद रखना ये जो आपकी पसंद है ना वो मत इस्तेमाल करना, क्योंकि आपकी पसंद के जो गीत हैं वो सारे सुला देने वाले हैं, मैं अंदाजा कर दिया है। इतने धीमे स्लो गीत आप, इसलिए मैं चलाता हूँ जब आप कहती है वो चलाओ, मेरे मतलब नहीं, तो ये बात है। तो कम कर दिन को काम कर रहे हैं सारे, और कुछ हमारी बहनें किचन में भी काम कर रही हैं, तो वो भी ज़ाहिर है कुकिंग कर रही होंगी, अगर कोई अच्छा सा गाना होगा तो उनकी हंडी में चमचा भी सही चलेगा। तो एनीवे सभी प्यारी बहन आजरा जी और सादिया मेरी प्यारी बहन आपके नाम, और मुना जी आपके नाम, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद मिलते हैं दोस्तों।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद मूर्ति गुरुमा इन लंदन। लर्न टाइमलेस योगिक विजडम डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। जॉइन अ 3-day सीरीज ऑफ इनलाइटनिंग टॉक्स ऑन योग सूत्रास फॉर रियलाइजिंग द ट्रू सेल्फ, 11th to 13th September 2026। लाइफ चेंजिंग सेशंस फीचरिंग प्रोफाउंड टॉक्स, Practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6pm to 8pm. And Sunday 13th September, 3pm to 5pm. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: वाह जी वाह, क्या गीत था। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब हमें तकरीबन 4 मिनट का गाना चाहिए क्योंकि कमर्शियल का जो टाइम है वो बहुत करीब है और हम चाहेंगे कि जो है वो आपको छोटा सा कोई गीत सुना दें इंस्टेड ऑफ हम बातें करते रहें और बातों में टाइम को आगे करें, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूँगा छोटा सा जो गीत है ना, छोटा सा गीत वो आप दोस्तों के लिए पेश करूं। तो इस छोटे से गीत को आसानी के साथ हम कमर्शियल तक पहुँच जाएंगे हुमा जी, और ये दो गाने हैं लेकिन एक 3 मिनट का और 18 सेकंड 18 सेकंड का है और एक जो है वो तकरीबन 4 मिनट का है। तो हम चाहेंगे कि 3 मिनट का जो गाना है वो सुने और कुछ दोस्तों को अपनी वो शादी का वक्त याद आ जाएगा क्योंकि ये गाना जब रिलीज हुआ था कोई खास नहीं है लेकिन उस वक्त ये जो शादियां हुई, जो हर शादी की जो वीडियो फिल्म बनी उस वक्त, उसमें ये गाना लाजम करार दिया गया था और हर वेडिंग वीडियो में ये गाना मौजूद था। तो जिन दोस्तों की उस वक्त शादी हुई
1: तो आप सबको अपनी अपनी शादी याद,
0: वही याद दिन याद आ जाएगा। कुछ दोस्तों की अच्छी यादें और कुछ दोस्त जो है वो जब वो याद करेंगे बोलेंगे यार
1: क्या याद करा दिया।
0: चलिए सुनते हैं इस गाने को ना। खान भाई भी फोन कर रहे हैं, खान भाई आप बार बार फोन करते हैं क्योंकि आज आपके साथ साथी हैं और आप काम कर रहे हैं। तो चलिए खान भाई, आपके सारे दोस्तों के नाम, आतिफ भाई के नाम, फारूक भाई के नाम, शारद भाई के नाम, शाह जी के नाम और लेथ साहब के नाम और अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले, आप भी फोन कर रहे हैं, आपको भी अपनी शादी का वक्त याद आ गया होगा जनाब, लेकिन आपकी शादी पे ये गाना नहीं रिलीज था इसलिए आपकी शादी की वीडियो में ये गाना नहीं होगा, पर एनीवे आपके नाम करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी जो है वो कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी मरहूम की आवाज़ों में एक सदाबहार पुराना गीत। तो टाइम चेक कर लें।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी
2: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 46 मिनट
0: पर क्या बज के हुए हैं?
2: 12:46।
0: हाँ, ये बोले ना 12:46,
2: इसका मतलब है 46 past 12।
0: 46 minutes past 12
2: प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी बढ़ तो रहे हैं
2: जी,
0: क्योंकि प्रोग्राम को खत्म भी करना है ना, टाइम के साथ चलना पड़ता है, तो करना पड़ता है। तो हमें फ़ोन किस किस ने किया? काफ़ी दोस्तों ने किया। अब्दुल क्यूम साहब राइसिंग हॉल से आपने फिर फ़ोन किया, अच्छा लगा। तो जनाब, आपने अपने दोस्तों को सलाम भेजा और ये सदाबहार पुराना गीत आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम होगा। उसके बाद खान भाई आपके दोस्तों के नाम होगा, मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम, अयूब चौहान साहब जनाब आपके नाम भी, महमूद भाई और जनाब हीरा खान साहब और तारिक जुल्फी साहब, नवीद भाई और सफीउल्ला भाई, दीगर तमाम दोस्तों के नाम, गुलाम भाई आप के स्टाफ के नाम। तो चलेंगे दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: ये मैसेज मर्सिडीज बेंज वैंस की ओर से हैं, जो संदाज रेडियो के साथ मिलकर लाए गए। यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूके में गाड़ियों के काम न करने, डाउन टाइम की वजह से बिजनेस को हर वैन के लिए रोज़ाना औसतन 1172 पाउंड का नुकसान होता है। इसलिए मर्सिडीज बेंज वैंस ने अप टाइम प्रॉमिस शुरू किया है, रोडसाइड असिस्टेंस और ज़्यादा समय तक सर्विस की सुविधा से लेकर रियल टाइम में गाड़ी की खराबी का पता लगाने और भी बहुत कुछ। इनकी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके बिजनेस को बिना रुके चलने में मदद करती हैं। मर्सिडीज बेंज वैंस हमेशा आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और उनके अप टाइम प्रॉमिस के बारे में जानें। स्टे ऑन द रोड रिपोर्ट, श्रेय देना ज़रूरी है। ये रिसर्च यूके के उन बिजनेसेस में 500 सीनियर फैसला लेने वालों के बीच की गई है जहां वैन का इस्तेमाल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जानकारी के लिए mbvans.co.uk/uptimepromise पर जाएं।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692378.
3: Official media partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने आशा भोसले और रफी साहब को सुना, और जल्दी में चलते हैं क्योंकि खबरें आने वाली हैं। ये छोटा सा गीत आप दोस्तों के नाम करते हैं।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं
1: जी, आगे बढ़े हैं। हमने क्या करना था, अभी मैं भूल गई, बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ।
0: ब्लैंक हो गई आप
1: जी,
0: बोली तो है नहीं है, ब्लैंक कैसे हो गई,
1: दिमाग से उतर गया, क्या बोलना।
0: चलिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है बड़े शहरों में। तो अब जाहिर है कि हमने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करना है हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का जो गीत है ये सभी सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनलाइट रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, यही आवर हमारा और आपका साथ है। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, कोई गीत सुनना चाहें, या फिर अपनी पसंद का या किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहें तो भी आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666। तो चलते हैं, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा।
2: The Hit of the Hour, brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी, इस वक्त स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 1:12 हो रहे हैं, यानी कि 1:12
0: हो जाता है बड़े बड़े शहरों में, होता था अब छोटे।
2: मैं आज ज़्यादा डिस्टर्ब, सॉरी।
0: तो अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद चौधरी मुजफ्फर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया। आपके नाम करेंगे, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम करेंगे। उसके बाद गुलाम भाई आपने फोन किया, खान भाई आज आपने काफी फोन किए जनाब, अभी भी आप फोन कर रहे हैं, तो आपके दोस्तों के नाम गीत करते हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं। तो आप सभी सुनने वालों के नाम ये प्यारा सा गीत होगा जो आप सभी पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English ESOL and maths courses. Whether you want to find work or

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना मोहम्मद अजीज और साजना सरगम की आवाजों में, और इसके साथ अब चलते हैं जनाब एक प्यारा सा गीत अरशद महमूद की आवाज में आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं। खान भाई चौधरी मुजफ्फर साहब, गुलाम भाई, अब्दुल कयूम साहब राइजिंग ऑल वाले, और मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम, अयूब चौहान साहब, महमूद भाई, और जनाब ईरा खान साहब, ताज जुल्फी साहब, नदीम मंसूर साहब, और दीगर तमाम जो दोस्त हैं उन सब के नाम ये गीत करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं अरशद महमूद की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, माल चाहते हैं। अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज़ में। और अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले आप दोस्तों के लिए एक प्यारी सी अनाउंसमेंट है। वो ये है कि द सनराइज रेडियो लिसनर्स चॉइस अवार्ड्स 2026 आर कमिंग सून, सेलिब्रेटिंग द बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वेन्यूज एंड आर्टिस्ट यू लव। और उसके बाद वोटिंग विल बी एक्सक्लूसिव टू लिसनर्स क्लब मेंबर्स, सो ज्वाइन फ्री नाउ एट सनराइज रेडियो डॉट मज जाते हैं एट सनराइज डॉट रेडियो एंड कीप लिसनिंग फॉर मोर डिटेल्स। तो चलते हैं, अब नदीम मंसूर साहब भी फ़ोन कर रहे हैं और उनके नाम भी ये गीत करते हैं। और उसके बाद जनाब जितने भी दोस्त हैं, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी, आपके नाम भी मज चाहते हैं। और इस वक्त जो है कुछ सहेलियाँ काम कर रही हैं, इकरा जी सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए। और इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब सभी सुनने वालों के लिए, गुलाम भाई, आपके स्टाफ के नाम भी। और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद दोस्तों गाना गाने के बाद मिलते हैं।
1: 24 hours a day. Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord you can trust.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना और एक और अनाउंसमेंट है आप दोस्तों के लिए। फैंसी ए बिट ऑफ फन, विजिट सनराइज प्ले एंड हेल्प राज रेस बैक टू द स्टूडियो इन सनराइज स्टूडियो रोश। टेस्ट योर फिल्म नॉलेज विद आवर बॉलीवुड क्विज और डिस्कवर विच बॉलीवुड कैरेक्टर यू आर। Play now at sunrise.radio and join the free Sunrise Listener Club to unlock even more. तो दोस्तों ये है, आप इसमें फ्री ज्वाइन हो सकते हैं और फिर मज़े ही मज़े जनाब। और अब वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है, तो चलेंगे दोस्तों सुनेंगे जोहर की अजान, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों अब वक्त जो है हो चुका है, वो कमर्शियल का भी हो चुका है और उसके बाद जनाब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और सदाबहार पुराने गीत की बारी आएगी। अभी हमें फ़ोन किया जनाब पाकिस्तान से चौधरी फरियाद साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का आपने, चौधरी मुजफ्फर साहब के लिए, अयूब चौहान साहब के लिए और दीगर दोस्तों के लिए, गजाला बहन के लिए, गजाला जमीन बहना के लिए, उनके लिए गीत सुनना चाहा। तो ये पुराना सा गीत है, अब इसके साथ नाम तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वक्त इतना मज़ीद नहीं बचता। जो प्रोग्राम का आखिरी गीत होगा वो थोड़ा सा होगा, तो ज़ाहिर है आप अधूरा सुनेंगे वो गीत, एक ही पूरा सुनेंगे। ये जो पूरा गीत आप सुनेंगे ये थोड़ा लंबा गीत है और ग़ुलाम भाई का फेवरेट गीत है, तो मैंने सोचा जुमे रात है, जुमा छुट्टी है हमारी, सैटरडे भी छुट्टी है, संडे को आएंगे तो ग़ुलाम भाई जो है ना वो तो खुश हो जाए, उनका स्टाफ खुश हो जाए। और उसके बाद हमें नदीम मंसूर साहब, आपने फ़ोन किया जनाब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। नदीम मंसूर साहब आप इस वक्त काम पे हैं और आपके साथ हैं पारस, आप उनके लिए भी गीत सुनना चाहते हैं और शिराज भाई के लिए भी सुनना चाहते हैं और शिराज भाई की पूरी टीम के नाम आप गीत करवाना चाहते हैं। ये पुराना गीत है, मस्ती भरा गीत होगा, सदाबहार पुराना गीत। आई होप के नदीम मंसूर साहब, पारस और शिराज और उनकी पूरी टीम को ये पुराना गीत ज़रूर पसंद आएगा। तो शुक्रिया फ़ोन करने का। और मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमैर, बाबर, इफराज आपके नाम भी। और इसी गीत को बाबर शाह पे इस वक्त शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त बैठे हुए हैं उनके नाम भी। और उसके बाद खान भाई आप के दोस्तों के नाम और वाजिद, अपने वाजिद भाई आपके नाम भी और गुलाम भाई आपका फेवरेट गीत है। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 1:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट 1। तो चलेंगे कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे मस्ती भरा गीत, गुलाम भाई का फेवरेट गीत और सफीउल्ला भाई आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद हमारी मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day.
3: No, sorry, mate.
4: No, we don't have that part.
5: Have you tried down the road?
6: We can get it in, but it won't be for a few days.
7: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz Vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
8: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
9: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
8: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
9: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
10: Official media partner Sunrise Radio.
11: Sunrise Radio. Sunrise.
10: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
12: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा की सुना और इसके साथ ही हुमा जी आप इजाजत ले लें।
1: जी आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है और इंशाल्लाह हम कल फिर आपके साथ
0: आएंगे। कल नहीं आएंगे, संडे आएंगे।
1: संडे आएंगे, ठीक है, हम संडे फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।
0: तो मुझे आमिर शहजाद को भी इजाजत दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात संडे को सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह नेकबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter.

उन दिनों जबकि तुम थे यहाँ, जिंदगी जागी जागी सी थी, सारे मौसम बड़े मेहरबान दोस्त थे, रास्ते दावत नामे थे जो मंजिलों ने लिखे थे जमी पर हमारे लिए, पेड़ बाहें पसारे खड़े थे हमें छाओं की शॉल पहनाने के वास्ते, शाम को सब सितारे बहुत मुस्कुराते थे जब देखते थे हमें, आती जाती हवाएं कोई गीत खुशबू का गाती हुई छेड़ती थी गुजर जाती थी, आसमां पिघले नीलम का

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज, free teaching assistant courses, free health and social care courses, free child care courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतिमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाए रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: less downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
1: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ईसॉल कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 3030 10 Bradford 7230 3030.
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Move for 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा, मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं।

गल है जी, यादों पर अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोहना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पौंडा ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744-62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Left, right, left, right, left, right, left, right. Parade, thump. Jawan, peeche se gana gaega, gana ga.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

सजा लिया, कुछ इस तरह से मैंने जीवन सजा लिया, हर बार एक नया चेहरा लगा लिया। तख्तीर की लकीरें हाथों में रुक गई, कदमों की आहटों से मंजिल ठहर गई, अपनों की आरजू को